इतिहास के सफों पे दर्ज हैं कहानियाँ कई देशों के संघर्ष के दौर की, वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने। ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में, कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में, कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की।

0: आप सुन रहे हो रेडियो मन भावन 90.8 FM, अलवेज हार्ट टचिंग। आप लखानदेश, आप ली मानसर।
1: कृषि संदेश।

नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, जब तक हमारी जेब में पैसा होता है, हमारे पास पद और प्रतिष्ठा होती हैं, तब तक हमारे आसपास लोगों का एक मेला लगा रहता है। हर कोई हमारा शुभचिंतक होने का दावा करता है, हर कोई दुहाई देता है कि वह हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन जैसे ही वक्त बदलता है, मौसम की तरह वे सारे लोग भी धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। तब हमें बड़ा झटका लगता है, जब हम टूट जाते हैं और उदास हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम रिश्तों की बुनियाद को ही नहीं समझ पाए। कबीर साहब आज हमें संसार के इसी कड़वे लेकिन परम सत्य नियम से परिचित करा रहे हैं, ताकि हम किसी भ्रम में ना जिए। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह मर्मभेदी सूत्र। तेरा संगी को नहीं, सब स्वार्थ बंधी लोई। तेरा संगी को नहीं, सब स्वार्थ बंधी लोई। मनी प्रतीति ना उपजे, जीव बेसास ना होई।

0: श्रोताओं, कबीर साहब जीवन का एक नग्न सत्य हमारे सामने रखते हुए कहते हैं, तेरा संगी को नहीं। इस संसार की यात्रा में वास्तव में तुम्हारा कोई पक्का साथी या संगी नहीं है। सब स्वार्थ बंधी लोई, यह जो लोई यानी संसार के लोग हैं, ये सब केवल और केवल अपने अपने स्वार्थ यानी मतलब और अपेक्षाओं की डोर से एक दूसरे से बंधे हुए हैं। जब तक स्वार्थ पूरा होता है तब तक रिश्ता रहता है। पर इस कड़वे सच की सबसे बड़ी विडंबना क्या है? अगली पंक्ति में कबीर कहते हैं, मनी परतिति ना उपजे। इस सच को जानने और बार बार देखने के बाद भी मनुष्य के मनी यानी मन में यह परतिति यानी सच्चा ज्ञान और वैराग्य पैदा नहीं होता। जीव बेसास ना होई। और यह जो अज्ञानी जीव है, इसे लाख समझाओ पर इसे इस परम सत्य पर बेसास यानी विश्वास ही नहीं होता। यह बार बार धोखा खाने के बाद भी फिर से उन्हीं झूठों सहारों में सुख ढूंढने निकल पड़ता है। यह दोहा अज्ञान और मूर्छा का एक गहरा विश्लेषण है। सांख्य और वेदांत दर्शन में माना गया है कि संसार का हर संबंध परिवर्तनशील और नाशवान है। आत्मा इस जगत में अकेली आती है और अकेली ही जाती है। लेकिन माया का पर्दा इतना गाढ़ा है कि मनुष्य का बार बार ठोकर खाने के बाद भी इसी भ्रम को पालता रहता है कि कोई न कोई उसे पूरा करेगा, कोई उसका स्थायी सहारा बनेगा। जीवन बेसास न होई। इसी भीतरी अंधता को दिखाता है कबीर। यहाँ रिश्तों की निंदा नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे हमें उस अपेक्षा से आज़ाद कर रहे हैं जो दुखों का कारण बनती हैं। वे समझा रहे हैं कि जब इस संसार में कोई तुम्हारा पराई नहीं, संगी नहीं है, तो फिर इस एकलौते अविनाशी संगी यानी अपने भीतर बैठे राम तत्व को क्यों नहीं खोजते जो कभी साथ नहीं छोड़ता। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा शांत होकर अपने रिश्तों की परतों को खोल कर देखिए। हम जिन लोगों के लिए अपनी भीतरी शांति, अपना समय और अपने जीवन के मूल्य दांव पर लगा रहे हैं, क्या वे हमारे साथ हमेशा रहने वाले हैं? क्या हम किसी झूठे भ्रम की बैसाखी के सहारे तो नहीं चल रहे हैं? आज कोशिश कीजिए इस बेसासी यानी अविश्वास की नींद से जागने की। संसार में रहिए, सबके साथ प्रेम और कर्तव्य का व्यवहार कीजिए, लेकिन अपनी अंतिम मंजिल और सहारा केवल उस परमात्मा को ही मानिए। जब आप किसी से कोई स्वार्थ या अपेक्षा नहीं रखते तो आपका मन आज़ाद होता है। खुद को पहचानिए, इस झूठे सम्मोहन को तोड़िए और अपने आत्मा के सच्ची संगी उस राम नाम से नाता जोड़िए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: श्रोत्यो, रेडियो मन भावन च्या कार्यक्रमांबद्दल आपले अभिप्राय देण्यासाठी आम्हाला फोन करा 9284499433 या क्रमांकावर, किंवा व्हॉट्सअप करा 9922337361 या क्रमांकावर।
2: मा तथागता, तू लाख लाख धगधगता सूर्यास मातीन, तुनी ताखात उजाय मातीन, उदय दिनात ज्ञानना कण कण आणि तपास समधी पीर्थिना गाभा, त्यामधला कण कण आणि रेणू रेणू कलाप, तुले झाय ज्ञान सोद दुनिया मातलं ज्ञान, त्या कायमना खराले डोकामा बठाडी, तू झाया बुद्ध। आन सम्यक संबुद्ध. मी तुना बुद्धत्वना चेतनाले खरं खुरी ठाण मांडीसनी ज्ञान लेवाना प्रवास करीसन हात लावा. आणि माले कळलं तुना शुद्ध विचार मातलं माणूस भावनानं बनावानी मेख समदा लोके आणि समदा लोकेसनं कल्याण कोणता कर्मवर व्हई ते मैत्री करुणा मुदिता उपेक्का हौ शुद्ध शुद्ध विशुद्ध लोकेसनं मंगल करणारा धर्म नीती शिकाडणारा धम्म तू असा समदा तत्व विचार मातला कणकण मा पसरेल विज्ञान अध्यात्म पेल खरं खोटं जोखेल यवाद भौतिकता तपाशेल म्हणजे समदा दुनियाना गाभामा शिरेल समधी दुनियानी चेत शिकता तू तुनी सम्यक संबोधी म्हणजे दुनियाना डोया दुनियामा दुनियाना जनमन समद खरं खुरं सूर्याना मायक उजाय पाडीशिनी तू उभा राहना दुखले चिमटी मा पकड तू आणि समदा लोकेसना दुखणं कारण मांड चार आर्यत आर्य सत्य स्वदिशिनी दुःख शे दुखले कारण शे दुखले खतम करता येस त्याले खतम करता कराना रस्ता विषय काही लोके टीका करायला लाग्यात तू अंतूनवर निराशावादी म्हणणार तुले पण तू ते विज्ञानवादी खरोखरं शोधणारा खरा माईन उगावणारा आशावाद पेरणारा म्हणजे दुःख खतम कराना तू शोधेल रस्ता सूर्याना उजायना माईक उजई घ्या बात तथागता तुनी खुदले बुद्ध म्हणशिनी घोषित कर बाकी नाशी तुले देव करानं ठरायला होतं तरी बी बठ्ठा जगना कल्याणा रस्ता तुन्या माणुसकीन्या संस्कारे स्थायी लांबा लचक कया मानशे मानशे मातल्या हलक्या बारीन्या पायथर्या तुना तत्वे स्थायी विचारे स्थायी मुई सकट उपाडी फेक्यात आन माणूस माणूस आणि त्यानं माणूस पण समताना सुवरेशी टाक हाऊ म्हणा हाऊ तुना जात पंथ रंग धर्म आखो बाई माणूस परदेश आणि सटर फाटर कितल्या गालक्या बारी पायत्र्या तुन्या तत्वज्ञांनी भिनकामण्या होत घ्यात तरी बी चालू गडीमा त्यासना चलिंतर मा फरकण्या पायत्र्या दिखत होतीन ते त्यासनाच माणूस पण वरे तू डाव ठिशिनी कायमना सवालच उभा कया देव परमात्मा आखो भरम करम कुभांड यज्ञ होम हवन जनावरसना बई आंधी भक्ती करी टाक्यात निपत्तर बिलकुलच बिनकामण्या होतात म्हणशिनी बात थागता बोधिसत्व सुमेदना सिद्धार्थ बनिशिनी तू महामायना पोटे जलम लिधा तू यवा बाजत आसित मुनी चकित झाया तुना मझारण्या बुद्ध तत्वना लखने पहिलाच सावा आसित मुलीले समजणार तुना आवते भोवते मायावी वैभवना देखावा उभा कया राजा शुद्धोधनी तुले दुखनी जराशी बी कय बठाले नको म्हणशिनी तुले दुखनी जराशी बी कय बठाले.
3: आपण ट्यून केलंय रेडिओ मन भावन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट टचिंग आपलं खानदेश आपली माणसं.
4: गीताई अध्याय 5 दुहेरी अकर्मावस्था योग आणि संन्यास किंवा कर्मसन्यास योग. अर्जुन म्हणाला कृष्णा संन्यास कर्मांचा तसा योग ही सांगसी दो होत जे बरे एक सांगते मज निश्चित. श्री भगवान म्हणाले योग संन्यास हे दोन्ही मोक्ष साधक सारखे विशेषची परी योग संन्यासाहून मानिला तो जान नित्य संन्यासी राग द्वेष नसे जया जो द्वंद्वा वेगळा झाला सुखे बंधा तुनी सुटे म्हणती सांख्य योगांते भिन्न मूढ न जाणते बाणो एक ही ती निष्ठा दोहींचे फळ देतसे.

0: दिल से सुनो, दिल से सुनाओ, रेडियो 91.8 FM, ऑलवेज हैड टचिंग।
1: विरास संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के 150वें जन्मशती वर्ष के अवसर पर उनके आदर्शों और विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: पूर्वी बंगाल और आसाम की यात्रा कर स्वामी जी बेलूर मठ लौट आए, पर उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पा रहा था। शिष्यों ने उन्हें परिश्रम न करने की सलाह दी, पर वे कहां मानने वाले थे। पठन पाठन शिष्यों और दर्शनार्थियों से शास्त्रों की आलोचना पूर्ववत चल रही थी, साथ ही साथ चल रहा था वैद्य जी का इलाज। इलाज के दौरान कठोर नियमों का पालन करना पड़ता था। स्वामी जी को नींद नहीं आती थी।
1: उन्हीं दिनों मठ में एक नया एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका खरीदा गया। नई चमकदार पुस्तकों को देखकर एक शिष्य ने कहा,
2: इतनी सारी मोटी मोटी पुस्तकें, एक जीवन में इन्हें पढ़ लेना संभव ही नहीं।
1: शिष्य नहीं जानते थे कि स्वामी जी ने इन पुस्तकों में से 10 खंडों का अध्ययन समाप्त कर 11वें खंड को पढ़ना शुरू किया है। उन्होंने कहा,
3: मैंने 10 खंड पढ़ लिए हैं, अगर कुछ पूछना हो तो पूछ लो, बता दूंगा।
2: क्या आपने इन्हें पढ़ लिया है?
3: और क्या, बिना पढ़े ही कह रहा हूँ।
0: इसके बाद स्वामी जी का आदेश पाकर शिष्य उन पुस्तकों में से चुन चुन कर कठिन विषयों में प्रश्न करने लगा। स्वामी जी ने उन प्रश्नों के जवाब तो दिए ही, कहीं कहीं उस पुस्तक की भाषा तक ज्यों के त्यों बोलने लगे। शिष्य स्वामी जी की असाधारण याददाश्त देख विस्मित होकर पुस्तकों को यथास्थान रखते हुए कहने लगा,
2: आश्चर्य, नहीं नहीं नहीं, ये मानवीय शक्ति नहीं हो सकती, असंभव।
3: देखा, एकमात्र ब्रह्मचर्य का पालन ठीक ठीक कर सकने पर सभी विद्याएं एक पल में सीख ली जा सकती हैं। मनुष्य का श्रुति घर स्मृति घर बन जाता है। इस ब्रह्मचर्य के अभाव से ही हमारा देश विनष्ट हो गया।

0: इसी वर्ष स्वामी जी की इच्छा हुई मठ में दुर्गा पूजा करने की। स्वामी जी के संकल्प की बात जानकर स्वामी ब्रह्मानंद आदि उनके गुरु भाई तथा अन्य शिष्यगण बड़े उत्साह पूर्वक पूजा का सामान जुटाने लगे। किसी प्रकार की पूजा अथवा धार्मिक कृत्य को संकल्प पूर्वक करने का अधिकार सन्यासी का नहीं होता, इसलिए स्वामी जी ने शारदा माता जी की अनुमति मांगी। माता जी ने अनुमति दी कि उन्हीं के नाम पर संकल्प होगा। इससे स्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए। यथा समय कुमार टुली से प्रतिमा मठ में लाई गई। पूजा के पहले दिन शारदा माता जी ने अपने बाग बाजार वाले निवास स्थान से मठ में आगमन किया। उनकी अनुमति लेकर ब्रह्मचारी कृष्णलाल महाराज सप्तमी के दिन पुजारी के आसन पर बैठे।
1: पंडित ईश्वरचंद भट्टाचार्य महाराज ने भी श्री माता जी के निर्देश पर देवगुरु बृहस्पति की तरह तंत्र धारक का आसन ग्रहण किया। यथाशास्त्र श्री दुर्गा माता की पूजा समाप्त हुई। श्री माता जी की इच्छा के अनुसार मठ में पशु का बलिदान नहीं हुआ। बलि के अनुकल्प के रूप में चीनी का नैवेद्य और मिठाई के ढेर प्रतिमा के दोनों ओर शोभायमान थे।
0: गरीब दुखी तथा असहायों को देहधारी ईश्वर मानकर संतोष पूर्वक भोजन कराना इस पूजा का विशेष अंग माना गया। इसके अतिरिक्त वेलूड बाली तथा उत्तरपाड़ा के परिचित तथा अपरिचित अनेक ब्राह्मण पंडितों को भी निमंत्रित किया गया और वे सभी आनंद पूर्वक सम्मिलित हुए थे। उस समय से मठ के प्रति उनका पूर्व विद्वेष दूर होकर ये विश्वास हो गया था कि मठ के सन्यासी गण यथार्थ में हिंदू सन्यासी हैं। श्री दुर्गा पूजा के बाद स्वामी जी की इच्छा के अनुसार मठ में प्रतिमा के सहयोग से श्री लक्ष्मी पूजा तथा श्री काली पूजा भी शास्त्र विधि के अनुसार अनुष्ठित हुई।
1: काली पूजा के बाद स्वामी जी अपनी माँ के साथ कालीघाट गए। बाल्यकाल में एक बार स्वामी जी को कोई कठिन रोग हुआ था। उस समय उनकी माँ ने मनौती मांगी थी कि पुत्र के रोग मुक्त होने पर काली देवी की विशेष पूजा देंगी और काली मंदिर में उनको लोटपोट करा लाएंगी। बाद में वे ये बात भूल गई थी। इस समय स्वामी जी की अस्वस्थता की बात सुनकर उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त करके पुत्र के पास समाचार भेजा। जननी के आदेश के अनुसार काली घाट की आदि गंगा में स्नान करके भीगे वस्त्र सहित स्वामी जी श्री काली माता के पद कमलों में 3 बार लोटपोट हुए।
0: इसके बाद 7 बार मंदिर की प्रदक्षिणा समाप्त कर उन्होंने सभा मंडप के पश्चिम भाग में खुले आंगन में बैठकर होम करना प्रारंभ किया। यज्ञ की पवित्र अग्नि प्रज्वलित हुई। होम कुंड में घृत की आहुति देते हुए कामदेव सदृश कांति वाले सन्यासी मानो ब्रह्मा के सदृश लग रहे थे। अनेक लोग स्वामी जी को घेर कर उनके यज्ञ संपादन का दर्शन करने लगे। स्वामी जी ने मठ में लौटकर आनंद से कहा,
2: काली घाट में अभी भी कैसा उदार भाव देखा। मुझे विलायत से लौटा हुआ जानकर भी मंदिर के अध्यक्षों ने मंदिर में प्रवेश करने में किसी प्रकार बाधा न दी, बल्कि बड़े आदर के साथ मंदिर में ले जाकर इच्छा के अनुसार पूजा करने में मेरी सहायता की।

0: बेलूर मठ और उसके आसपास के स्थान स्वामी जी को अत्यंत प्रिय थे। मठ में गंगा के किनारे अथवा बेलूर ग्राम में वे प्राय ही टहलते। मठ के प्रांगण में स्थित आम के पेड़ के नीचे उनके बैठने का प्रमुख स्थान था। वहां खाट पर बैठ वे वार्तालाप करते, पुस्तकें पढ़ते अथवा पत्र, निबंध आदि लिखते। उनके वर्तमान समाधि मंदिर के कोने में स्थित बेल के पेड़ के नीचे उनका एक अन्य प्रिय स्थान था। उनका शयन कक्ष पुराने मठ भवन के दुमंजिले पर गंगा की ओर दक्षिण पूर्वी कोने पर स्थित था। उनके दिन का काफी समय इसी कमरे में बीतता। यही कमरा उनके भोजनालय और कार्यालय के रूप में भी काम आता। इसी कमरे में उनके वस्त्र, बिस्तर, आसन, चायदानी, मेज, कुर्सी, आलमारी, खड़ाऊ, लिखने के उपकरण, वाद्य यंत्र तथा अन्य उपयोग की चीजें जैसे पहले थीं, अब भी ठीक उसी प्रकार रखी हुई हैं। वो कमरा और कोई उपयोग में नहीं लाता, केवल कोई कोई वहां जाकर ध्यान आदि करता है। अपने कमरे की साज सज्जा को किस तरह से देखते थे ये एक बार उन्होंने ही कहा था। एक दिन उनके कुछ दोस्तों ने कहा,
1: स्वामी जी, बचपन में विवाह करने के लिए कहने पर तुम कहते थे, विवाह नहीं करूंगा, मैं क्या बनूंगा देखना। तो तुमने जो कहा था वही किया स्वामी जी।
2: हाँ भाई, किया तो है। तुम लोग देख तो रहे हो, कुछ खा नहीं पाता और उस पर इतना परिश्रम। बाप रे, कितनी मेहनत की है। आज अमेरिकी लोगों ने देखो कैसी प्यार से खाट, बिछावन तथा गद्दी दी है। थोड़ा खा भी पा रहा हूं, परंतु भाई भोग मेरे भाग में नहीं है। गद्दी पर सोते ही रोग बढ़ जाता है, दमे से प्राण निकलने लगते हैं। पुनः फर्श पर लेटता हूं तभी चैन मिलता है।
3: अपने सदा के अभ्यास के अनुसार वे बड़े तड़के में ही शैया त्याग देते और बाकी मठवासियों को भी जगाकर ध्यान, जप आदि में लग जाने को कहते। स्वास्थ्य ठीक रहा तो स्वयं भी सबके साथ मंदिर में ध्यान करने बैठते। इसके बाद उनका सुबह का कार्य था गौ सेवा तथा उद्यान की देखभाल। स्वामी ब्रह्मानंद के ऊपर सब्जी तथा फूल के बगीचे की जिम्मेदारी थी। उसके बगल में ही गायों के चरने का मैदान था। इन दोनों भूखंडों के सीमा विभाग को लेकर वे स्वामी ब्रह्मानंद के साथ कितनी ही बार बालकोचित प्रेम कलह में लग जाते, ताकि गायें बगीचा चर न जाएं, और मठ के सन्यासीगण बड़े आनंद का उपभोग करते।
0: मठ के छोटे बड़े सारे कर्मों में स्वामी जी की तीक्ष्ण दृष्टि रहती थी और मठवासियों में से भी प्रत्येक उनकी सेवा करने की अवसर पाने को तत्पर रहता। नाव में होकर मठ से कलकत्ता जाते समय मल्लाह लोग उन्हें अपनी अपनी नाव में ले जाने के लिए झगड़ते। कभी कभी वे केवल कौपीन पहने मठ में चारों ओर घूमते अथवा एक बड़े लबादे से शरीर को ढककर गांव के निर्जन पथों पर अकेले ही घूमते। कई बार वे गंगा के तट पर अथवा मठ के भीतर किसी वृक्ष की घनी छाया में बैठे रहते। फिर अन्य किसी किसी समय वे अपने कमरे में बैठकर पुस्तकों के पन्ने पलटते या चित्र देखते। कभी कभी वे रसोई घर में जाकर रंधन कार्य का निरीक्षण करते और स्वयं अपनी इच्छा से दो एक अच्छी पकवान भी तैयार करते।
3: पशु पक्षियों के प्रति शैशव काल से ही स्वामी जी के मन में एक स्वाभाविक आकर्षण था। उनमें से किसी के भी उद्यान में घुसते ही ब्रह्मानंद शिकायत करते और स्वामी जी पशुओं का पक्ष लेकर प्रमाणित करने लगते कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है। मठ में उन्होंने कुछ गायें, बत्तख, कुत्ते, बकरियां, सारस तथा हिरन पाल रखे थे। एक बकरी का नाम उन्होंने हंसी रखा था और उसी के दूध से उनकी सवेरे की चाय बनती थी। एक बकरी के बच्चे को वो प्रेम पूर्वक मटरू कहकर पुकारते थे और उसके गले में उन्होंने घुंघरू पहना दिए थे। मटरू दिन रात उनके पीछे पीछे घूमता रहता और वो भी उसके साथ छोटे बच्चों के समान दौड़ दौड़ कर खेला करते।
0: वे तत्कालीन समाज में प्रचलित अदब कायदों की विशेष परवाह नहीं किया करते थे। कभी पांव में खड़ाऊ पहने, कभी नंगे बदन, कभी गेरुआ पहने तो तो कभी केवल कौपीन पहने वे जैसी खुशी घूमते रहते। कभी कभी उनके हाथ में हुक्का या लाठी होती, कोट, शर्ट, कॉलर, जूता इत्यादि का कोई झंझट ही नहीं था। उन दिनों वे पूर्णतया स्वच्छंद अपने निर्जन मानस भूमि पर निवास कर रहे थे। नए लोग श्रद्धापूर्वक उनका दर्शन करने को आ पहुंचते। वे स्वामी जी की अवस्था देखकर कहते, अच्छा तो ये ही विश्व विजयी स्वामी जी विवेकानंद हैं।
3: अपने पशु पक्षियों से उन्हें इतना प्रेम था कि कुछ दिन बाद मटरू के मर जाने पर उन्होंने खेत पूर्वक कहा था,
2: बड़े आश्चर्य की बात है, मैं जिससे भी थोड़ा प्यार करता हूँ वही मर जाता है।
3: इन जंतुओं के आहार आदि की व्यवस्था वे स्वयं ही करते और स्वामी सदानंद इसमें उनके प्रधान सहायक थे। वे उन सबके साथ प्रेम पूर्वक वार्तालाप आदि भी करते, मानो वे मनुष्यों के समान ही समझदार और बुद्धिमान हों, जैसे वे जानवर नहीं मानव हों। एक दिन उन्होंने हंसते हुए कहा था,
2: मटरू अवश्य ही पिछले किसी जन्म में मेरा कोई संबंधी रहा होगा।
3: बीच बीच में वे बकरे हंसी के पास जाकर दूध के लिए अनुरोध करते, मानो दूध देना या न देना उनकी इच्छा पर निर्भर हो। इन प्राणियों के प्रति उनके स्नेह की स्पष्ट छाप 7 सितंबर को भगिनी क्रिस्टीन के नाम लिखे उनके पत्र में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है।
2: वर्षा का जो जल मठ में जमा हो जाता है उसके निष्कासन के लिए एक गहरी नाली खोदी जा रही है। उसी कार्य में हाथ बटाकर मैं अभी अभी लौटा हूँ। मेरा विशाल काय सारस तथा बतखें सब बड़े आनंद में हैं। मेरा पाला हुआ काला हिरन मठ से भाग गया था। उसे ढूंढ निकालने में कई दिनों तक हमें बड़ी परेशानी उठानी पड़ी। मेरी एक बतख कल दुर्भाग्यवश मर गई। उसे लगभग सप्ताह भर से सांस लेने में कष्ट हो रहा था। इन सब घटनाओं को देखकर हमारे एक वृद्ध रसिक साधु कह रहे थे, महाराज जब इस कलयुग में नमी और वर्षा से बतख को जुकाम हो जाता है और मेंढक छींकने लगते हैं तो फिर जीवित रहने से कोई लाभ नहीं। एक बतख के पंख झड़ रहे थे। इसका कोई उपचार न मालूम होने के कारण एक पात्र में थोड़े जल में किंचित कार्बोलिक एसिड मिलाकर उसे उसमें कुछ मिनट के लिए ये सोचकर डाल दिया गया था कि या तो वो पूरी तौर से चंगी होठेगी अथवा मर जाएगी, परंतु अब वो ठीक है।
0: मठ के कुत्ते का नाम था बाघा। वो मठ के अन्य सभी जानवरों की रखवाली करता, दादागिरी भी करता और सोचता कि मठ में उसका एक विशिष्ट स्थान है। एक बार उसकी अत्यधिक शैतानी से तंग आकर उसे गंगा के उस पार ले जाकर छोड़ दिया गया था, परंतु बाघा को यह व्यवस्था स्वीकार न थी। उसे मठ से लगाव था और विशेषकर स्वामी जी को छोड़कर वो रह ही नहीं सकता था। दिन भर बड़े कष्ट में बिताने के बाद शाम तक उसने उपाय सोच लिया और एक नाव में चढ़ बैठा। जब नाव के मल्लाहों और यात्रियों ने उसे भगाने का प्रयास किया तो भी वो उतरा नहीं, बल्कि दांत निकालकर गरजते हुए उन्हें धमकी देने लगा।
3: किसी तरह उसे चुपचाप पार उतरा देना ही उचित समझकर सबने उसे इस पार छोड़ दिया। इस पार आकर वो रात उसने इधर उधर छिपकर बिताई। भोर के 4 बजे जब स्वामी जी स्नान घर में प्रवेश करने जा रहे थे, उसी समय पांव किसी चीज से टकरा जाने पर वे चौंक उठे और ध्यान से देखा तो वो बाघा निकला। बाघा उनके चरणों में लौटकर विनय पूर्वक क्षमा मांग रहा था और फिर से मठ में रहने की याचना कर रहा था। उसने ठीक समझ लिया था कि इस विपत्ति से एकमात्र स्वामी जी ही उसका उद्धार कर सकते हैं। इसीलिए अन्य किसी की भी नींद खुलने से पहले ही जहां पर स्वामी जी की शरण पाई जा सकती है वहीं बैठकर वो प्रतीक्षा कर रहा था। स्वामी जी ने उसकी पीठ थपथपाकर स्नेह दिखाते हुए उसे आश्वस्त किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने सबको बोल दिया कि बाघा चाहे जो भी करे अब उसे मठ से भगाया नहीं जा सकेगा।
0: बाघा की और भी कई बातें बड़ी अद्भुत थी। ग्रहण के बाद संध्या पूजन के समय शंख घंटे बजने पर ये भी सबके साथ स्नान करने गंगा में उतरता था। स्वामी जी के देह त्याग के काफी दिनों बाद जब बाघा की मृत्यु हुई तो उसका शव गंगा में विसर्जित कर दिया गया। ज्वार के पानी के साथ उसका शरीर बहकर चले जाने पर भी भाटे के समय सबने विस्मय पूर्वक देखा कि वो मठ की सीमा में ही गंगा की मिट्टी पर पड़ा है। इससे मठ के प्रति बाघा के लगाव का परिचय पाकर एक ब्रह्मचारी ने वरिष्ठ सन्यासियों की अनुमति लेकर बाघा को वहीं पर दफना दिया।

0: उन दिनों जाड़े के मौसम में प्रायः बड़े दिन की छुट्टियों में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ करता था। उस वर्ष दिसंबर में कलकत्ता कांग्रेस का अधिवेशन होने तथा स्वामी जी के बेलूर मठ में उपस्थित रहने के कारण अनेक नेता उन्हें न केवल विश्व प्रसिद्ध साधु के रूप में बल्कि भारतीय नवजागरण के एक देश प्रेमी अग्रदूत मानकर उनसे मिलने को आया करते थे। स्वामी जी अपने बिगड़े हुए स्वास्थ्य की बात भूलकर सदा ही इन देश नायकों के साथ वार्तालाप को प्रस्तुत रहते थे और श्रोतागण भी इससे मुग्ध हो जाते तथा स्वामी जी की बातें उनके मन में अंकित हो जाती।
1: स्वदेश की अनेक समस्याओं पर उन्होंने चिंतन किया था और उनके समाधान भी ढूंढ निकाले थे, परंतु सुयोग्य कर्मियों के अभाव में उन विचारों के कार्यान्वित करने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। अतएव आग्रह करने वाले श्रोता मिलने पर वे उत्साह पूर्वक दीर्घ काल तक इन बातों पर चर्चा करते थे। एक दिन मठ के विस्तृत प्रांगण में टहलते हुए वे उत्साह और आवेग पूर्ण भाव से लगभग 1.5 घंटे तक एक विषय पर बोलते रहे। इन साक्षात्कारों का उल्लेख करते हुए एक अखबार में छपा था,
2: पिछले कांग्रेस अधिवेशन के अवसर पर कलकत्ते में हमारी उनके साथ अंतिम बार भेंट हुई थी। उस समय उत्साह के साथ उन्होंने हम लोगों से जिस विशुद्ध तथा उच्च कोटि की हिंदी में धारा प्रवाह वार्तालाप की, वैसी भाषा बोल पाना किसी उत्तर भारतीय हिंदी भाषी के लिए भी अत्यंत गौरव की बात होगी।
0: राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के समय श्रीयुत मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी, वे भी स्वामी जी के दर्शनार्थ बेलूर मठ आए थे, परंतु उन्हें दर्शन नहीं हो सके। अपनी आत्मकथा में उन्होंने लिखा है,
3: ब्रह्म समाज के घनिष्ठ संपर्क में आने के बाद विवेकानंद को देखे बिना रह पाना मेरे लिए संभव न था, इसलिए मैं बड़े उत्साह के साथ लगभग सारा रास्ता ही पैदल चलता हुआ बेलूर मठ गया था। मठ का शांत वातावरण मुझे बड़ा अच्छा लगा। स्वामी जी उस समय अस्वस्थ होकर कलकत्ते के मकान में थे, इस कारण उनसे भेंट होना संभव नहीं, ये जानकर मैं बड़ा निराश और दुखी हुआ था।
1: उस समय स्वामी जी की अस्वस्थता के कारण सामान्य आगंतुकों को उनके पास मिलने नहीं दिया जाता था। एक दिन लोकमान्य तिलक मठ के दक्षिणी भाग में बेल के पेड़ के नीचे नाव से उतरे और उन्होंने अपना नाम लिखा हुआ एक कार्ड एक वृद्ध साधु को दे दिया, परंतु साधु ने बताया कि स्वामी जी बीमार हैं और उनसे भेंट नहीं हो सकती। तिलक अपना कार्ड छोड़कर चले गए। संध्या के समय जब स्वामी जी नीचे उतरे तो कार्ड पाते ही उन्होंने तिलक से मिलने की इच्छा व्यक्त की, परंतु वे तो जा चुके थे। ये सुनकर स्वामी जी बड़े नाराज हो गए और बोले कि उन वृद्ध साधु ने अनुचित कार्य किया है और कहा कि वे वृद्ध साधु निश्चयानंद का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, उनके लिए उचित था कि वे तिलक का नाम जानते और स्वामी जी के साथ उनकी भेंट कराते। स्वामी जी ने पत्र लिखकर तिलक से पुनः आने का अनुरोध किया और 2 दिनों के भीतर ही तिलक आए भी।
0: तिलक के साथ मठ के दक्षिणी ओर के मैदान में टहलते हुए स्वामी जी ने उनके साथ बातचीत की। उनके निकट दूसरा कोई भी न था, तो भी दूर से दिख रहा था कि स्वामी जी प्रेरणा के आवेग में सिर तथा हाथ हिलाते हुए बोलते जा रहे थे और तिलक धैर्य तथा शांति के साथ सुन रहे थे। निश्चयानंद के मतानुसार तिलक का कार्यक्षेत्र महाराष्ट्रीय ब्राह्मण समाज के बीच ही सीमित था। स्वामी जी के संपर्क में आने के बाद से ही वो जनता के बीच में फैल गया। उनके मतानुसार लोकमान्य तिलक ने और भी कई बार मठ में आकर स्वामी जी के साथ बातचीत की थी और एक दिन स्वामी जी ने मुगलाई चाय बनाकर उन्हें पिलाई थी। जायफल, जावित्री, इलायची, लवंग, जाफरान आदि को एक साथ मिलाकर उबालने के पश्चात उस काढ़े में चाय की पत्ती, दूध तथा चीनी मिलाकर वो चाय बनी थी।

0: दरिद्र अभागों के लिए स्वामी जी का मन रोता रहता था, अतः वे हमेशा उनकी सहायता के लिए तत्पर रहते थे। उसी संदर्भ में एक घटना का वर्णन सुनिए।
1: उन दिनों मठ की जमीन की सफाई करने तथा मिट्टी काटने के लिए प्रतिवर्ष कुछ संथाल स्त्री पुरुष आया करते थे। उनके साथ मिलकर स्वामी जी उनके सुख दुख पर चर्चा करते तथा तरह तरह से हास परिहास भी किया करते। उनमें से एक का नाम केष्टा था। वो स्वामी जी का प्रिय पात्र तथा कामकाज में बड़ा होशियार। स्वामी जी जब उससे बातें करने जाते तो कभी कभी वो कह उठता,
2: अरे स्वामी जी बाप, तू हमारे काम के समय यहाँ ना आया कर, तेरे साथ बात करने से हमारा काम बंद हो जाता है और बाद में बूढ़ा बाबा आकर डांटता है।
3: नहीं नहीं, बूढ़ा बाबा नहीं डांटेगा, तू अपने देश की बातें बता। अच्छा ये बता, आज यहाँ खाना खाएगा क्या?
2: नहीं बाप, नहीं नहीं, अब हम तुम लोगों का छुआ नहीं खाते। अब मेरा ब्याह जो हो गया है, तुम्हारा छुआ नमक खाने से हमारी जात जाएगी रे बाप।
3: तो नमक मत खा, बिना नमक का तरकारी पका देंगे तब तो खाएगा ना।
0: केष्टा राजी हो गया। स्वामी जी ने उसके लिए पूड़ी, तरकारी, मिठाई, दही आदि की व्यवस्था कर दी।
2: अरे स्वामी जी बाप, ऐसी चीजें कहाँ से पाई, हमने तो ऐसा खाना कभी नहीं खाया बाप, कभी नहीं खाया।
1: स्वामी जी ने स्वयं सामने बैठकर उन्हें खाना खिलाया और बोले,
3: तुम लोग नारायण हो, आज मेरा नारायण को भोग देना पूरा हुआ।
0: भोजन के बाद संथाल लोग तृप्त होकर चले गए तो स्वामी जी ने शरद बाबू से कहा,
3: इन्हें देखा मानो साक्षात नारायण है, ऐसा सरल चित्त, ऐसा निष्कपट सहज प्रेम पहले कभी नहीं देखा।
0: तदनंतर मठ के सन्यासियों की ओर उन्मुख होकर वे बोले,
3: देखो वे लोग कैसे सरल हैं, इनके दुख थोड़ा दूर कर सकोगे? नहीं तो गेरुए वस्त्र पहनने से क्या लाभ हुआ? पर हिताय सर्वस्व अर्पण, इसी को सच्चा सन्यास कहते हैं। अच्छी चीजें कभी इन्हें भोग करने को नहीं मिली। जी में आता है कि मठ सब बेचकर इन्हीं गरीब दुखी दरिद्र नारायणों में बांट दूं। हमने तो वृक्ष के नीचे वास करने को ही सार समझा है। आह, देश के लोग खाने पहनने को नहीं पाते, फिर हम कैसे अपने मुख में अन्न डालते हैं, हाय।
1: कहते कहते उनके आंखों से आंसुओं की धार बह चली। थोड़ा संभल कर वे बोले,
3: देश के गरीब दुखी

ठहरे। देखना, हमारी सहानुभूति के अभाव में मद्रास अंचल के हजारों पैरिया धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। हम लोग दिन रात उनसे यही कहे जा रहे हैं, छूना मत, छूना मत। देश में क्या अब दया धर्म नहीं बचा है रे भाई? केवल छुआछूत मानने वालों का दल है। ऐसे आचार व्यवहार के मुख पर मारो झाड़ू, मारो लाठी। तुम लोग बुद्धिमान लड़के हो, यहां इतने दिनों से आ रहे हो, अब तक क्या किया है बोलो तो? दूसरों के लिए क्या एक जन्म दान में नहीं दे सकते? अगले जन्म में आकर वेदांत आदि पढ़ लेना। इस बार परोपकार के लिए शरीर दान दे दो, तभी समझूंगा कि मेरे पास आना सार्थक हुआ है।

इतिहास के सफों पे दर्ज हैं कहानियां कई देशों के संघर्ष के दौर की। वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने। ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में, कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में, कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की।

0: आप सुन रहे हो रेडियो मन भावन 90.8 FM, अलवेज हार्ट टचिंग। आप लखानदेश, आप ली मानसर।
1: कृषि संदेश।

0: नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, जब तक हमारी जेब में पैसा होता है, हमारे पास पद और प्रतिष्ठा होती हैं, तब तक हमारे आसपास लोगों का एक मेला लगा रहता है। हर कोई हमारा शुभचिंतक होने का दावा करता है, हर कोई दुहाई देता है कि वह हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन जैसे ही वक्त बदलता है, मौसम की तरह वे सारे लोग भी धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। तब हमें बड़ा झटका लगता है, जब हम टूट जाते हैं और उदास हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम रिश्तों की बुनियाद को ही नहीं समझ पाए। कबीर साहब आज हमें संसार के इसी कड़वे लेकिन परम सत्य नियम से परिचित करा रहे हैं, ताकि हम किसी भ्रम में ना जिए। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह मर्मभेदी सूत्र। तेरा संगी को नहीं, सब स्वार्थ बंधी लोई। तेरा संगी को नहीं, सब स्वार्थ बंधी लोई। मनी प्रतीति ना उपजे, जीव बेसास ना होई। तेरा संगी को नहीं, सब स्वार्थ बंधी लोई। तेरा संगी को नहीं, सब स्वार्थ बंधी लोई। मनि परतिति ना उपजे, जीव बेसास न होई। रे साधो, जीव बेसास न होई। श्रोताओं, कबीर साहब जीवन का एक नग्न सत्य हमारे सामने रखते हुए कहते हैं, तेरा संगी को नहीं। इस संसार की यात्रा में वास्तव में तुम्हारा कोई पक्का साथी या संगी नहीं है। सब स्वार्थ बंधी लोई, यह जो लोई यानी संसार के लोग हैं, ये सब केवल और केवल अपने अपने स्वार्थ यानी मतलब और अपेक्षाओं की डोर से एक दूसरे से बंधे हुए हैं। जब तक स्वार्थ पूरा होता है, तब तक रिश्ता रहता है। पर इस कड़वे सच की सबसे बड़ी विडंबना क्या है? अगली पंक्ति में कबीर कहते हैं, मनि प्रतीति ना उपजे। इस सच को जानने और बार बार देखने के बाद भी मनुष्य के मनि यानी मन में यह प्रतीति यानी सच्चा ज्ञान और वैराग्य पैदा नहीं होता। जीव बेसास ना होई। और यह जो अज्ञानी जीव है, इसे लाख समझाओ पर इसे इस परम सत्य पर बेसास यानी विश्वास ही नहीं होता। यह बार बार धोखा खाने के बाद भी फिर से उन्हीं झूठों सहारों में सुख ढूंढने निकल पड़ता है। यह दोहा अज्ञान और मूर्छा का एक गहरा विश्लेषण है। सांख्य और वेदांत दर्शन में माना गया है कि संसार का हर संबंध परिवर्तनशील और नाशवान है। आत्मा इस जगत में अकेली आती है और अकेली ही जाती है। लेकिन माया का पर्दा इतना गाढ़ा है कि मनुष्य का बार बार ठोकर खाने के बाद भी इसी भ्रम को पालता रहता है कि कोई न कोई उसे पूरा करेगा, कोई उसका स्थायी सहारा बनेगा। जीवन बेसास न होई, इसी भीतरी अंधता को दिखाता है। कबीर यहाँ रिश्तों की निंदा नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे हमें उस अपेक्षा से आज़ाद कर रहे हैं जो दुखों का कारण बनती हैं। वे समझा रहे हैं कि जब इस संसार में कोई तुम्हारा पराई नहीं, संगी नहीं है, तो फिर इस एकलौते अविनाशी संगी यानी अपने भीतर बैठे राम तत्व को क्यों नहीं खोजते, जो कभी साथ नहीं छोड़ता। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा शांत होकर अपने रिश्तों की परतों को खोल कर देखिए हम जिन लोगों के लिए अपनी भीतरी शांति, अपना समय और अपने जीवन के मूल्य दांव पर लगा रहे हैं, क्या वे हमारे साथ हमेशा रहने वाले हैं? क्या हम किसी झूठे भ्रम की बैसाखी के सहारे तो नहीं चल रहे हैं? आज कोशिश कीजिए इस बेसासी यानी अविश्वास की नींद से जागने की। संसार में रहिए, सबके साथ प्रेम और कर्तव्य का व्यवहार कीजिए, लेकिन अपनी अंतिम मंजिल और सहारा केवल उस परमात्मा को ही मानिए। जब आप किसी से कोई स्वार्थ या अपेक्षा नहीं रखते तो आपका मन आज़ाद होता है। खुद को पहचानिए, इस झूठे सम्मोहन को तोड़िए और अपने आत्मा के सच्ची संगी उस राम नाम से नाता जोड़िए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ, सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: श्रोते हो, रेडियो मन भावन च्या कार्यक्रमांबद्दल आपले अभिप्राय देण्यासाठी आम्हाला फोन करा 9284499433 या क्रमांकावर, किंवा व्हॉट्सअप करा 9922337361 या क्रमांकावर।
2: मा तथागता, तू लाख लाख धगधगता सूर्यास मातीन, तुनी ताखात उदय मातीन, उदय दिनात ज्ञानना कण कण आणि तपास समधी पीरथीना गाभा, त्यामधला कण कण आणि रेणू रेणू कलाप, तुले झाय ज्ञान सोद दुनिया मातलं ज्ञान, त्या कायमना खराले डोकामा बठाडी, तू झाया बुद्ध आणि सम्यक संबुद्ध। मी तुना बुद्धत्वना चेतनाले खरं खुरी ठाण मांडीसनी, ज्ञान लेवाना परवास करीसन हात लावा, आणि माले कैन तुना शुद्ध विचार मातलं माणूस भावनानं बनावानी मेख, समदा लोके आणि समदा लोकेसनं कल्याण, कोणता कर्मवर व्हई ते मैत्री करुणा मुदिता उपेक्का, हौ शुद्ध शुद्ध विशुद्ध लोकेसनं मंगल करणारा धर्म, नीती शिकाडणारा धम्म। तू असा समदा तत्व विचार मातला कण कण मा पसरेल, ज्ञान अध्यात्म पेल खरं खोटं जोखेल, यवाद भौतिकता तपाशेल, म्हणजे समदा दुनिया नागा बामा शिरेल, समधी दुनियानी चेत शिकता तू, तुनी सम्यक संबोधी म्हणजे दुनियाना डोया, दुनियामा दुनियाना जनमन समद खरं खुरं सूर्याना मायक उदय पाडीशिनी, तू उभा राह ना दुखले चिमटी मा पकड तू, आणि समदा लोकेसना दुखणं कारण मांड, चार आर्यत आर्य सत्य स्वदेशिनी, दुख शे दुखले कारण शे, दुखले खतम करता येस, त्याले खतम करता कराना रस्ता भी शे, काही लोके टीका करायला लाग्या तू अंतूनवर, निराशावादी म्हणणार तुले, पण तू ते ज्ञानवादी खरोखर शोधणारा खरा माईन उगावणारा आशावाद पेरणारा, म्हणजेन दुःख खतम कराना तू शोधेल रस्ता, सूर्याना उदयाना माईक उदय घ्या। बा तथागता, तुनी खुदले बुद्ध म्हणशिनी घोषित कर, बाकी ना सी तुले देव करान ठरायला होतं तरी बी, बठ्ठा जगना कल्याणना रस्ता तुन्या माणुसकीन्या संस्कारे स्थायी, लांबा लचक कया मानशे मानशे मातल्या हलक्या बारीन्या पायथऱ्या, तुना तत्वे स्थायी विचारे स्थायी मुय सकट उपाडी फेक्यात, आणि माणूस माणूस आणि त्यानं माणूस पण समताना सुईवरे शिही टाक, हाऊ म्हणा हाऊ तुना जात पंथ रंग धर्म आखो भाई माणूस परदेस आणि सटर फटर, कितल्या गालक्या बारी पायथऱ्या तुन्या तत्वज्ञांनी बिनकामण्या होत घ्यात, तरी बी चालू घडीमा त्यासना चलिंतरमा फरकण्या पायथऱ्या दिखत होतीन ते त्यासनाच माणूसपण वरे, तो ढा उठीशीनी कायमना सवालज उभा कया. देव परमात्मा आखो भरम करम कुभाण यज्ञ होम हवन जनावरसना बई आंधी भक्ती करी टाक्यात निपत्तर बिलकुलच बिनकामण्या होतात म्हणशीनी. बा तथागता बोधिसत्व सुमेधना सिद्धार्थ बनीशिनी तू महामायना पोटे जलम लिधा. तू यवा बाजत आसित मुनी चकित झाया. तुना मजारण्या बुद्ध तत्वना लखने पहिलाच सावा आसित मुलीले समजणार. तुना आवते भोवते मायावी वैभवना देखावा उभा कया. राजा शुद्धोधननी तुले दुखनी जराशी बी कय बठाले नको म्हणशिनी. तुले दुखनी जराशी बी कय बठाले.
3: आपण ट्यून केलंय रेडिओ मन भावन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट टचिंग. आपलं खानदेश आपली माणसं.
4: गीताई अध्याय 5 दुहेरी अकर्मावस्था योग आणि संन्यास किंवा कर्मसन्यास योग. अर्जुन म्हणाला कृष्णा संन्यास कर्मांचा तसा योग ही सांगसी दो होत जे बरे एक सांगते मज निश्चित. श्री भगवान म्हणाले योग संन्यास हे दोन्ही मोक्ष साधक सारखे विशेषची परी योग संन्यासा हुनी मानिला तो जान नित्य संन्यासी राग द्वेष नसे जया जो द्वंद्वा वेगळा झाला सुखे बंधा तुनी सुटे म्हणती सांख्य योगांते भिन्न मूढ न जाणते बाणो एक ही ती निष्ठा दोहिंचे फळ देतसे सांख्यास जे मिळे स्थान ते योग्यांस ही लाभते एक रूपची हे दोन्ही जो पाहे तोची पाहतो योगा वाचुनि संन्यास कधी साधे चिना सुखे संयमी जो योग जोडो नि ब्रह्म शीघ्र चिगाठतो अंतरी धुतला योगी जिंकुनी मन इंद्रिये झाला जीवची भूतांचा करुणी ही अलिप्ततो न काही मी करी ऐसे योगी तत्वज्ञ जानुनी देखे ऐके शिवे हुंगे खाय जाय निजेश्वसे बोले सोडी धरी किंवा पापणी हाल विजरी इंद्रिये आपुल्या अर्थी वागती हे ची पाहतो ब्रह्मी ठेवुनिया कर्मे संग सोडो निजो करी पापे न लिप्त तो होय पद्मपत्र जसे जळे देहा मनाने बुद्धीने इंद्रियांनी ही केवळ आत्मशुद्ध्यरत निसंग योगी कर्म अनुष्ठिती युक्त तो फळ सोडो निशांती निश्चळ पावतो अयुक्त स्वैर वृत्तीने फळी आसक्त बांधिला मनाने सगळी कर्मे सोडूनी संयमी सुखे नवद्वार पुरी राहे करी ना करवीहिना न करते पण लोकांचे न कर्मे निर्मितो प्रभू न कर्मी फल संयोग स्वभावे सर्व हो तसे न घे पाप हि कोणाचे न वा पुण्य हितो विभू अज्ञाने झांकिले ज्ञान त्यामुळे जीव मोहित गेले अज्ञान ते ज्यांचे आत्मज्ञाने तया मग परब्रह्म दिसे स्वच्छ जनू सूर्ये प्रकाशिले रंगले त्यात ओतूनी बुद्धे निश्चय जीवन पुन्हा येती न माघारे ज्ञाने पाप धुवो धूनिया विद्या विनय संपन्न द्विज गाय तसा गज श्वान चांडाळ हे सारे तत्वज्ञ समपाहती इथेची जिंकिला जन्म समत्वी मन रोवुनी निर्दोष समजे ब्रह्म झाले तेथेची ते स्थिर प्रिय लाभे नको हर्ष नको उद्वेग अप्रिये बुद्धी निश्चळ निर्मोह ब्रह्मी ज्ञानी स्थिरावला विटला विषयी जाणे अंतरी सुख कायते ब्रह्मी मिसळला जेव्हा ब्रह्मी मिसळला तेव्हा भोगी ते सुख अक्षय विषयातील जे भोगते दुःखासचि कारण येती जसे तसे जाती विवेकी न रमे तिथे प्रयत्ने मरणापूर्वी ह्या देही जिरवू शके काम क्रोधातले वेग तो योगी तो खरा सुखी प्रकाश स्थिरता सौख्य अंतरी लाभली जया ब्रह्म होवुनी तो योगी ब्रह्म निर्माण मेळवी फिटले दोष शंगाही मुठी तधरिले मन पावले ब्रह्म निर्माण ज्ञानी विश्वहितीरत काम क्रोधास जिंकूणी यत्ने चित्तास बांधिती देखती ब्रह्म निर्वाण आत्मज्ञानी चहूकडे विषयांचा बहिष्कार डोळा भ्रूसंगमी स्थिर करुणी नासिकास्तानी प्राणापान हि सारके आवरी मोनी मोक्षार्थी इंद्रिये मन बुद्धिजो सोडी इच्छा भय क्रोध सर्वदा सुटलाचितो भोक्ता यज्ञ तपांचा मी सोयरा विश्वचालक जानूनी ह्या परी माते शांतीस वरिलाचितो अध्याय पाचवा समाप्त.
1: शिक्षण माहिती ज्ञान मनोरंजनाने सजलेले सदाबहार कार्यक्रम ऐकायला विसरू नका. रेडिओ मनभावन 90.8 FM ऑलवेज हर्ट टचिंग.
5: रसिक हो नमस्कार. आनंदाचे डोह ही सद्गुरु कृपेने जीवनात आनंद आलेल्या एका साधकाची भावभक्तीची भावुक गाथा आहे. सद्गुरु कृपेने आपल्या

0: दिल से सुनो, दिल से सुनाओ, रेडियो 1 भावन 90.8 FM, always had touchy.
1: गरा संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के 150वें जन्मशती वर्ष के अवसर पर उनके आदर्शों और विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक

0: पूर्वी बंगाल और आसाम की यात्रा कर स्वामी जी बेलूड़ मठ लौट आए, पर उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पा रहा था। शिष्यों ने उन्हें परिश्रम न करने की सलाह दी, पर वे कहां मानने वाले थे। पठन पाठन शिष्यों और दर्शनार्थियों से शास्त्रों की आलोचना पूर्ववत चल रही थी, साथ ही साथ चल रहा था वैद्य जी का इलाज। इलाज के दौरान कठोर नियमों का पालन करना पड़ता था। स्वामी जी को नींद नहीं आती थी।
1: उन्हीं दिनों मठ में एक नया एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका खरीदा गया। नई चमकदार पुस्तकों को देखकर एक शिष्य ने कहा,
2: इतनी सारी मोटी मोटी पुस्तकें, एक जीवन में इन्हें पढ़ लेना संभव ही नहीं।
1: शिष्य नहीं जानते थे कि स्वामी जी ने इन पुस्तकों में से 10 खंडों का अध्ययन समाप्त कर 11वें खंड को पढ़ना शुरू किया है। उन्होंने कहा,
3: मैंने 10 खंड पढ़ लिए हैं, अगर कुछ पूछना हो तो पूछ लो, बता दूंगा।
2: क्या आपने इन्हें पढ़ लिया है?
3: और क्या, बिना पढ़े ही कह रहा हूँ।
0: इसके बाद स्वामी जी का आदेश पाकर शिष्य उन पुस्तकों में से चुन चुन कर कठिन विषयों में प्रश्न करने लगा। स्वामी जी ने उन प्रश्नों के जवाब तो दिए ही, कहीं कहीं उस पुस्तक की भाषा तक ज्यों के त्यों बोलने लगे। शिष्य स्वामी जी की असाधारण याददाश्त देख विस्मित होकर पुस्तकों को यथास्थान रखते हुए कहने लगा,
2: आश्चर्य, नहीं नहीं नहीं, ये मानवीय शक्ति नहीं हो सकती, असंभव।
3: देखा, एकमात्र ब्रह्मचर्य का पालन ठीक ठीक कर सकने पर सभी विद्याएं एक पल में सीख ली जा सकती हैं। मनुष्य का श्रुति घर स्मृति घर बन जाता है। इस ब्रह्मचर्य के अभाव से ही हमारा देश विनष्ट हो गया।

0: इसी वर्ष स्वामी जी की इच्छा हुई मठ में दुर्गा पूजा करने की। स्वामी जी के संकल्प की बात जानकर स्वामी ब्रह्मानंद आदि उनके गुरु भाई तथा अन्य शिष्यगण बड़े उत्साह पूर्वक पूजा का सामान जुटाने लगे। किसी प्रकार की पूजा अथवा धार्मिक कृत्य को संकल्प पूर्वक करने का अधिकार सन्यासी का नहीं होता, इसलिए स्वामी जी ने शारदा माता जी की अनुमति मांगी। माता जी ने अनुमति दी कि उन्हीं के नाम पर संकल्प होगा। इससे स्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए। यथा समय कुमार टुली से प्रतिमा मठ में लाई गई। पूजा के पहले दिन शारदा माता जी ने अपने बाग बाजार वाले निवास स्थान से मठ में आगमन किया। उनकी अनुमति लेकर ब्रह्मचारी कृष्णलाल महाराज सप्तमी के दिन पुजारी के आसन पर बैठे।
1: पंडित ईश्वरचंद भट्टाचार्य महाराज ने भी श्री माताजी के निर्देश पर देवगुरु बृहस्पति की तरह तंत्र धारक का आसन ग्रहण किया। यथाशास्त्र श्री दुर्गा माता की पूजा समाप्त हुई। श्री माताजी की इच्छा के अनुसार मठ में पशु का बलिदान नहीं हुआ। बलि के अनुकल्प के रूप में चीनी का नैवेद्य और मिठाई के ढेर प्रतिमा की दोनों ओर शोभायमान थे।
0: गरीब दुखी तथा असहायों को देहधारी ईश्वर मानकर संतोष पूर्वक भोजन कराना इस पूजा का विशेष अंग माना गया। इसके अतिरिक्त वेलूड़ बाली तथा उत्तरपाड़ा के परिचित तथा अपरिचित अनेक ब्राह्मण पंडितों को भी निमंत्रित किया गया और वे सभी आनंद पूर्वक सम्मिलित हुए थे। उस समय से मठ के प्रति उनका पूर्व विद्वेष दूर होकर ये विश्वास हो गया था कि मठ के सन्यासी गण यथार्थ में हिंदू सन्यासी हैं। श्री दुर्गा पूजा के बाद स्वामी जी की इच्छा के अनुसार मठ में प्रतिमा के सहयोग से श्री लक्ष्मी पूजा तथा श्री काली पूजा भी शास्त्र विधि के अनुसार अनुष्ठित हुई।
1: काली पूजा के बाद स्वामी जी अपनी माँ के साथ कालीघाट गए। बाल्यकाल में एक बार स्वामी जी को कोई कठिन रोग हुआ था। उस समय उनकी माँ ने मनौती मांगी थी कि पुत्र के रोग मुक्त होने पर काली देवी की विशेष पूजा देंगी और काली मंदिर में उनको लोटपोट करा लाएंगी। बाद में वे ये बात भूल गई थी। इस समय स्वामी जी की अस्वस्थता की बात सुनकर उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त करके पुत्र के पास समाचार भेजा। जननी के आदेश के अनुसार कालीघाट की आदि गंगा में स्नान करके भीगे वस्त्र सहित स्वामी जी श्री काली माता के पद कमलों में 3 बार लोटपोट हुए।
0: इसके बाद 7 बार मंदिर की प्रदक्षिणा समाप्त कर उन्होंने सभा मंडप के पश्चिम भाग में खुले आंगन में बैठकर होम करना प्रारंभ किया। यज्ञ की पवित्र अग्नि प्रज्वलित हुई। होम कुंड में घृत की आहुति देते हुए कामदेव सदृश कांति वाले सन्यासी मानो ब्रह्मा के सदृश लग रहे थे। अनेक लोग स्वामी जी को घेर कर उनके यज्ञ संपादन का दर्शन करने लगे। स्वामी जी ने मठ में लौटकर आनंद से कहा,
2: काली घाट में अभी भी कैसा उदार भाव देखा। मुझे विलायत से लौटा हुआ जानकर भी मंदिर के अध्यक्षों ने मंदिर में प्रवेश करने में किसी प्रकार बाधा न दी, बल्कि बड़े आदर के साथ मंदिर में ले जाकर इच्छा के अनुसार पूजा करने में मेरी सहायता की।

0: बेलूर मठ और उसके आसपास के स्थान स्वामी जी को अत्यंत प्रिय थे। मठ में गंगा के किनारे अथवा बेलूर ग्राम में वे प्राय ही टहलते। मठ के प्रांगण में स्थित आम के पेड़ के नीचे उनके बैठने का प्रमुख स्थान था। वहां खाट पर बैठ वे वार्तालाप करते, पुस्तकें पढ़ते अथवा पत्र, निबंध आदि लिखते। उनके वर्तमान समाधि मंदिर के कोने में स्थित बेल के पेड़ के नीचे उनका एक अन्य प्रिय स्थान था। उनका शयन कक्ष पुराने मठ भवन के दुमंजिले पर गंगा की ओर दक्षिण पूर्वी कोने पर स्थित था। उनके दिन का काफी समय इसी कमरे में बीतता। यही कमरा उनके भोजनालय और कार्यालय के रूप में भी काम आता। इसी कमरे में उनके वस्त्र, बिस्तर, आसन, चायदानी, मेज, कुर्सी, आलमारी, खड़ाऊ, लिखने के उपकरण, वाद्य यंत्र तथा अन्य उपयोग की चीजें जैसे पहले थीं, अब भी ठीक उसी प्रकार रखी हुई हैं। वो कमरा और कोई उपयोग में नहीं लाता, केवल कोई कोई वहां जाकर ध्यान आदि करता है। अपने कमरे की साज सज्जा को किस तरह से देखते थे ये एक बार उन्होंने ही कहा था। एक दिन उनके कुछ दोस्तों ने कहा,
1: स्वामी जी, बचपन में विवाह करने के लिए कहने पर तुम कहते थे, विवाह नहीं करूंगा, मैं क्या बनूंगा देखना। तो तुमने जो कहा था वही किया स्वामी जी।
2: हाँ भाई, किया तो है। तुम लोग देख तो रहे हो, कुछ खा नहीं पाता और उस पर इतना परिश्रम। बाप रे, कितनी मेहनत की है। आज अमेरिकी लोगों ने देखो कैसी प्यार से खाट, बिछावन तथा गद्दी दी है। थोड़ा खा भी पा रहा हूं, परंतु भाई भोग मेरे भाग में नहीं है। गद्दी पर सोते ही रोग बढ़ जाता है, दमे से प्राण निकलने लगते हैं। पुनः फर्श पर लेटता हूं तभी चैन मिलता है।
3: अपने सदा के अभ्यास के अनुसार वे बड़े तड़के में ही शैया त्याग देते और बाकी मठवासियों को भी जगाकर ध्यान, जप आदि में लग जाने को कहते। स्वास्थ्य ठीक रहा तो स्वयं भी सबके साथ मंदिर में ध्यान करने बैठते। इसके बाद उनका सुबह का कार्य था गौ सेवा तथा उद्यान की देखभाल। स्वामी ब्रह्मानंद के ऊपर सब्जी तथा फूल के बगीचे की जिम्मेदारी थी। उसके बगल में ही गायों के चरने का मैदान था। इन दोनों भूखंडों के सीमा विभाग को लेकर वे स्वामी ब्रह्मानंद के साथ कितनी ही बार बालकोचित प्रेम कलह में लग जाते ताकि गायें बगीचा चर न जाएं, और मठ के सन्यासीगण बड़े आनंद का उपभोग करते।
0: मठ के छोटे बड़े सारे कर्मों में स्वामी जी की तीक्ष्ण दृष्टि रहती थी और मठवासियों में से भी प्रत्येक उनकी सेवा करने की अवसर पाने को तत्पर रहता। नाव में होकर मठ से कलकत्ता जाते समय मल्लाह लोग उन्हें अपनी अपनी नाव में ले जाने के लिए झगड़ते। कभी कभी वे केवल कौपीन पहने मठ में चारों ओर घूमते अथवा एक बड़े लबादे से शरीर को ढककर गांव के निर्जन पथों पर अकेले ही घूमते। कई बार वे गंगा के तट पर अथवा मठ के भीतर किसी वृक्ष की घनी छाया में बैठे रहते। फिर अन्य किसी किसी समय वे अपने कमरे में बैठकर पुस्तकों के पन्ने पलटते या चित्र देखते। कभी कभी वे रसोई घर में जाकर रंधन कार्य का निरीक्षण करते और स्वयं अपनी इच्छा से दो एक अच्छी पकवान भी तैयार करते।
3: पशु पक्षियों के प्रति शैशव काल से ही स्वामी जी के मन में एक स्वाभाविक आकर्षण था। उनमें से किसी के भी उद्यान में घुसते ही ब्रह्मानंद शिकायत करते और स्वामी जी पशुओं का पक्ष लेकर प्रमाणित करने लगते कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है। मठ में उन्होंने कुछ गायें, बत्तख, कुत्ते, बकरियां, सारस तथा हिरन पाल रखे थे। एक बकरी का नाम उन्होंने हंसी रखा था और उसी के दूध से उनकी सवेरे की चाय बनती थी। एक बकरी के बच्चे को वो प्रेम पूर्वक मटरू कहकर पुकारते थे और उसके गले में उन्होंने घुंघरू पहना दिए थे। मटरू दिन रात उनके पीछे पीछे घूमता रहता और वो भी उसके साथ छोटे बच्चों के समान दौड़ दौड़ कर खेला करते।
0: वे तत्कालीन समाज में प्रचलित अदब कायदों की विशेष परवाह नहीं किया करते थे। कभी पांव में खड़ाऊ पहने, कभी नंगे बदन, कभी गेरुआ पहने, तो कभी केवल कौपीन पहने वे जैसी खुशी घूमते रहते। कभी कभी उनके हाथ में हुक्का या लाठी होती। कोट, शर्ट, कॉलर, जूता इत्यादि का कोई झंझट ही नहीं था। उन दिनों वे पूर्णतया स्वच्छंद अपने निर्जन मानस भूमि पर निवास कर रहे थे। नए लोग श्रद्धा पूर्वक उनका दर्शन करने को आ पहुंचते। वे स्वामी जी की अवस्था देखकर कहते, अच्छा तो ये ही विश्व विजयी स्वामी जी विवेकानंद हैं।
3: अपने पशु पक्षियों से उन्हें इतना प्रेम था कि कुछ दिन बाद मटरू के मर जाने पर उन्होंने खेत पूर्वक कहा था,
2: बड़े आश्चर्य की बात है, मैं जिससे भी थोड़ा प्यार करता हूँ वही मर जाता है।
3: इन जंतुओं के आहार आदि की व्यवस्था वे स्वयं ही करते और स्वामी सदानंद इसमें उनके प्रधान सहायक थे। वे उन सबके साथ प्रेम पूर्वक वार्तालाप आदि भी करते, मानो वे मनुष्यों के समान ही समझदार और बुद्धिमान हों, जैसे वे जानवर नहीं मानव हों। एक दिन उन्होंने हंसते हुए कहा था,
2: मटरू अवश्य ही पिछले किसी जन्म में मेरा कोई संबंधी रहा होगा।
3: बीच बीच में वे बकरे हंसी के पास जाकर दूध के लिए अनुरोध करते, मानो दूध देना या न देना उनकी इच्छा पर निर्भर हो। इन प्राणियों के प्रति उनके स्नेह की स्पष्ट छाप 7 सितंबर को भगिनी क्रिस्टीन के नाम लिखे उनके पत्र में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है।
2: वर्षा का जो जल मठ में जमा हो जाता है उसके निष्कासन के लिए एक गहरी नाली खोदी जा रही है। उसी कार्य में हाथ बटाकर मैं अभी अभी लौटा हूँ। मेरा विशाल काय सारा उसे लगभग सप्ताह भर से सांस लेने में कष्ट हो रहा था। इन सब घटनाओं को देखकर हमारे एक वृद्ध रसिक साधु कह रहे थे, महाराज जब इस कलयुग में नमी और वर्षा से बतख को जुकाम हो जाता है और मेंढक छींकने लगते हैं तो फिर जीवित रहने से कोई लाभ नहीं। एक बतख के पंख झड़ रहे थे। इसका कोई उपचार न मालूम होने के कारण एक पात्र में थोड़े जल में किंचित कार्बोलिक एसिड मिलाकर उसे उसमें कुछ मिनट के लिए ये सोचकर डाल दिया गया था कि या तो वो पूरी तौर से चंगी होठेगी अथवा मर जाएगी, परंतु अब वो ठीक है।
0: मठ के कुत्ते का नाम था बाघा। वो मठ के अन्य सभी जानवरों की रखवाली करता, दादागिरी भी करता और सोचता कि मठ में उसका एक विशिष्ट स्थान है। एक बार उसकी अत्यधिक शैतानी से तंग आकर उसे गंगा के उस पार ले जाकर छोड़ दिया गया था, परंतु बाघा को यह व्यवस्था स्वीकार न थी। उसे मठ से लगाव था और विशेषकर स्वामी जी को छोड़कर वो रह ही नहीं सकता था। दिन भर बड़े कष्ट में बिताने के बाद शाम तक उसने उपाय सोच लिया और एक नाव में चढ़ बैठा। जब नाव के मल्लाहों और यात्रियों ने उसे भगाने का प्रयास किया तो भी वो उतरा नहीं, बल्कि दांत निकालकर गरजते हुए उन्हें धमकी देने लगा।
3: किसी तरह उसे चुपचाप पार उतरा देना ही उचित समझकर सबने उसे इस पार छोड़ दिया। इस पार आकर वो रात उसने इधर उधर छिपकर बिताई। भोर के 4 बजे जब स्वामी जी स्नान घर में प्रवेश करने जा रहे थे, उसी समय पांव किसी चीज से टकरा जाने पर वे चौंक उठे और ध्यान से देखा तो वो बाघा निकला। बाघा उनके चरणों में लौटकर विनय पूर्वक क्षमा मांग रहा था और फिर

0: उससे मठ में रहने की याचना कर रहा था। उसने ठीक समझ लिया था कि इस विपत्ति से एकमात्र स्वामी जी ही उसका उद्धार कर सकते हैं। इसीलिए अन्य किसी की भी नींद खुलने से पहले ही जहां पर स्वामी जी की शरण पाई जा सकती है वहीं बैठकर वो प्रतीक्षा कर रहा था। स्वामी जी ने उसकी पीठ थपथपाकर स्नेह दिखाते हुए उसे आश्वस्त किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने सबको बोल दिया कि बाघा चाहे जो भी करे अब उसे मठ से भगाया नहीं जा सकेगा।
1: बाघा की और भी कई बातें बड़ी अद्भुत थी। ग्रहण के बाद संध्या पूजन के समय शंख घंटे बजने पर ये भी सबके साथ स्नान करने गंगा में उतरता था। स्वामी जी के देह त्याग के काफी दिनों बाद जब बाघा की मृत्यु हुई तो उसका शव गंगा में विसर्जित कर दिया गया। ज्वार के पानी के साथ उसका शरीर बहकर चले जाने पर भी भाटे के समय सबने विस्मय पूर्वक देखा कि वो मठ की सीमा में ही गंगा की मिट्टी पर पड़ा है। इससे मठ के प्रति बाघा के लगाव का परिचय पाकर एक ब्रह्मचारी ने वरिष्ठ सन्यासियों की अनुमति लेकर बाघा को वहीं पर दफना दिया।

0: दिनों जाड़े के मौसम में प्रायः बड़े दिन की छुट्टियों में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ करता था। उस वर्ष दिसंबर में कलकत्ता कांग्रेस का अधिवेशन होने तथा स्वामी जी के बेलूर मठ में उपस्थित रहने के कारण अनेक नेता उन्हें न केवल विश्व प्रसिद्ध साधु के रूप में बल्कि भारतीय नवजागरण के एक देश प्रेमी अग्रदूत मानकर उनसे मिलने को आया करते थे। स्वामी जी अपने बिगड़े हुए स्वास्थ्य की बात भूलकर सदा ही इन देश नायकों के साथ वार्तालाप को प्रस्तुत रहते थे और श्रोतागण भी इससे मुग्ध हो जाते तथा स्वामी जी की बातें उनके मन में अंकित हो जाती।
1: स्वदेश की अनेक समस्याओं पर उन्होंने चिंतन किया था और उनके समाधान भी ढूंढ निकाले थे, परंतु सुयोग्य कर्मियों के अभाव में उन विचारों के कार्यान्वित करने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। अतएव आग्रह करने वाले श्रोता मिलने पर वे उत्साह पूर्वक दीर्घ काल तक इन बातों पर चर्चा करते थे। एक दिन मठ के विस्तृत प्रांगण में टहलते हुए वे उत्साह और आवेग पूर्ण भाव से लगभग 1.5 घंटे तक एक विषय पर बोलते रहे। इन साक्षात्कारों का उल्लेख करते हुए एक अखबार में छपा था,
2: पिछले कांग्रेस अधिवेशन के अवसर पर कलकत्ते में हमारी उनके साथ अंतिम बार भेंट हुई थी। उस समय उत्साह के साथ उन्होंने हम लोगों से जिस विशुद्ध तथा उच्च कोटि की हिंदी में धारा प्रवाह वार्तालाप की, वैसी भाषा बोल पाना किसी उत्तर भारतीय हिंदी भाषी के लिए भी अत्यंत गौरव की बात होगी।
0: राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के समय श्रीयुत मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी, वे भी स्वामी जी के दर्शनार्थ बेलूर मठ आए थे, परंतु उन्हें दर्शन नहीं हो सके। अपनी आत्मकथा में उन्होंने लिखा है,
3: ब्रह्म समाज के घनिष्ठ संपर्क में आने के बाद विवेकानंद को देखे बिना रह पाना मेरे लिए संभव न था, इसलिए मैं बड़े उत्साह के साथ लगभग सारा रास्ता ही पैदल चलता हुआ बेलूर मठ गया था। मठ का शांत वातावरण मुझे बड़ा अच्छा लगा। स्वामी जी उस समय अस्वस्थ होकर कलकत्ते के मकान में थे, इस कारण उनसे भेंट होना संभव नहीं, ये जानकर मैं बड़ा निराश और दुखी हुआ था।
1: उस समय स्वामी जी की अस्वस्थता के कारण सामान्य आगंतुकों को उनके पास मिलने नहीं दिया जाता था। एक दिन लोकमान्य तिलक मठ के दक्षिणी भाग में बेल के पेड़ के नीचे नाव से उतरे और उन्होंने अपना नाम लिखा हुआ एक कार्ड एक वृद्ध साधु को दे दिया, परंतु साधु ने बताया कि स्वामी जी बीमार हैं और उनसे भेंट नहीं हो सकती। तिलक अपना कार्ड छोड़कर चले गए। संध्या के समय जब स्वामी जी नीचे उतरे तो कार्ड पाते ही उन्होंने तिलक से मिलने की इच्छा व्यक्त की, परंतु वे तो जा चुके थे। ये सुनकर स्वामी जी बड़े नाराज हो गए और बोले कि उन वृद्ध साधु ने अनुचित कार्य किया है और कहा कि वे वृद्ध साधु निश्चयानंद का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, उनके लिए उचित था कि वे तिलक का नाम जानते और स्वामी जी के साथ उनकी भेंट कराते। स्वामी जी ने पत्र लिखकर तिलक से पुनः आने का अनुरोध किया और 2 दिनों के भीतर ही तिलक आए भी।
0: तिलक के साथ मठ के दक्षिणी ओर के मैदान में टहलते हुए स्वामी जी ने उनके साथ बातचीत की। उनके निकट दूसरा कोई भी न था, तो भी दूर से दिख रहा था कि स्वामी जी प्रेरणा के आवेग में सिर तथा हाथ हिलाते हुए बोलते जा रहे थे और तिलक धैर्य तथा शांति के साथ सुन रहे थे। निश्चयानंद के मतानुसार तिलक का कार्यक्षेत्र महाराष्ट्रीय ब्राह्मण समाज के बीच ही सीमित था। स्वामी जी के संपर्क में आने के बाद से ही वो जनता के बीच में फैल गया। उनके मतानुसार लोकमान्य तिलक ने और भी कई बार मठ में आकर स्वामी जी के साथ बातचीत की थी और एक दिन स्वामी जी ने मुगलाई चाय बनाकर उन्हें पिलाई थी। जायफल, जावित्री, इलायची, लवंग, जाफरान आदि को एक साथ मिलाकर उबालने के पश्चात उस काढ़े में चाय की पत्ती, दूध तथा चीनी मिलाकर वो चाय बनी थी।

0: दीन दरिद्र अभागों के लिए स्वामी जी का मन रोता रहता था, अतः वे हमेशा उनकी सहायता के लिए तत्पर रहते थे। उसी संदर्भ में एक घटना का वर्णन सुनिए।
1: उन दिनों मठ की जमीन की सफाई करने तथा मिट्टी काटने के लिए प्रतिवर्ष कुछ संथाल स्त्री पुरुष आया करते थे। उनके साथ मिलकर स्वामी जी उनके सुख दुख पर चर्चा करते तथा तरह तरह से हास परिहास भी किया करते। उनमें से एक का नाम केष्टा था। वो स्वामी जी का प्रिय पात्र तथा कामकाज में बड़ा होशियार। स्वामी जी जब उससे बातें करने जाते तो कभी कभी वो कह उठता,
2: अरे स्वामी जी बाप, तू हमारे काम के समय यहाँ ना आया कर। तेरे साथ बात करने से हमारा काम बंद हो जाता है और बाद में बूढ़ा बाबा आकर डांटता है।
3: नहीं नहीं, बूढ़ा बाबा नहीं डांटेगा। तू अपने देश की बातें बता। अच्छा ये बता, आज यहाँ खाना खाएगा क्या?
2: नहीं बाप, नहीं नहीं, अब हम तुम लोगों का छुआ नहीं खाते। अब मेरा ब्याह जो हो गया है, तुम्हारा छुआ नमक खाने से हमारी जात जाएगी रे बाप।
3: तो नमक मत खा, बिना नमक का तरकारी पका देंगे, तब तो खाएगा ना।
0: केष्टा राजी हो गया। स्वामी जी ने उसके लिए पूड़ी, तरकारी, मिठाई, दही आदि की व्यवस्था कर दी।
2: अरे स्वामी जी बाप, ऐसी चीजें कहाँ से पाई? हमने तो ऐसा खाना कभी नहीं खाया बाप, कभी नहीं खाया।
1: स्वामी जी ने स्वयं सामने बैठकर उन्हें खाना खिलाया और बोले,
3: तुम लोग नारायण हो, आज मेरा नारायण को भोग देना पूरा हुआ।
0: भोजन के बाद संथाल लोग तृप्त होकर चले गए तो स्वामी जी ने शरद बाबू से कहा,
3: इन्हें देखा मानो साक्षात नारायण है। ऐसा सरल चित्त, ऐसा निष्कपट सहज प्रेम पहले कभी नहीं देखा।
0: तदनंतर मठ के सन्यासियों की ओर उन्मुख होकर वे बोले,
3: देखो वे लोग कैसे सरल हैं, इनके दुख थोड़ा दूर कर सकोगे? नहीं तो गेरुए वस्त्र पहनने से क्या लाभ हुआ? पर हिताय सर्वस्व अर्पण, इसी को सच्चा सन्यास कहते हैं। अच्छी चीजें कभी इन्हें भोग करने को नहीं मिली। जी में आता है कि मठ सब बेचकर इन्हीं गरीब दुखी दरिद्र नारायणों में बांट दूं। हमने तो वृक्ष के नीचे वास करने को ही सार समझा है। आह, देश के लोग खाने पहनने को नहीं पाते, फिर हम कैसे अपने मुख में अन्न डालते हैं? हाय।
1: कहते कहते उनके आंखों से आंसुओं की धार बह चली। थोड़ा संभल कर वे बोले,
3: देश के गरीब दुखियों के लिए कोई नहीं सोचता है रे। जो लोग राष्ट्र के मेरुदंड हैं, जिनके परिश्रम से अन्न उपजता है, जिन लोगों के एक दिन काम बंद कर देने से नगर में हाहाकार मच जाता है, हाय, उन्हें सहानुभूति दिखाने वाला, उनके दुख शोक में सांत्वना देने वाला देश में कोई नहीं है रे। देखना, हमारी सहानुभूति के अभाव में मद्रास अंचल के हजारों पैरिया धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। हम लोग दिन रात उनसे यही कहे जा रहे हैं, छूना मत, छूना मत। देश में क्या अब दया धर्म नहीं बचा है रे भाई? केवल छुआछूत मानने वालों का दल है। ऐसे आचार व्यवहार के मुख पर मारो झाड़ू, मारो लाठी। तुम लोग बुद्धिमान लड़के हो, यहां इतने दिनों से आ रहे हो, अब तक क्या किया है बोलो तो? दूसरों के लिए क्या एक जन्म दान में नहीं दे सकते? अगले जन्म में आकर वेदांत आदि पढ़ लेना। इस बार परोपकार के लिए शरीर दान दे दो, तभी समझूंगा कि मेरे पास आना सार्थक हुआ है।